0: आज पीछे हो गया है
1: क्या
0: चार चार चार ओ राजा चार चार चार ओ राजा चार चार चार आज पीछे हो गया हमको आज पीछे हो गया हमको
1: क्या
0: प्यार प्यार प्यार ओ राजा प्यार प्यार प्यार ओ राजा प्यार प्यार प्यार
1: हलुआ बाबू जी हलुआ।

0: माता जी से ये कह दूंगा मैंने सुन ली रानी, माता जी से ये कह दूंगा मैंने सुन ली रानी। आज हमारे घर में दे दो, आज हमारे घर में दे दो,
1: क्या
0: तार तार तार ओ राजा, तार तार तार ओ राजा, तार तार तार। आज कितने हो गए आंखें, आज कितने हो गए आंखें, चार चार चार ओ राजा, चार चार चार ओ राजा, चार चार चार।

0: खेले
1: पहली ही बाजी न गए हम, पहली ही बाजी न गए हम।
0: क्या
1: हार हार हार ओ राजा, हार हार हार ओ राजा, हार हार हार। आज किसी पे हो गई आंखें, आज किसी पे हो गई आंखें। चार चार चार ओ राजा, चार चार चार ओ राजा, चार चार चार।
2: आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हिच हिच हिच की आए रे तबीयत बिचकी बिचकी जाए। डीरा टा डीरा

साजन जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हिच हिच हिच की आए रे तबियत बिचकी जाए। डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा।

अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। जब देखूं अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। कोई शराबी मद का प्याला जैसे पी के आए हित हित हित की आए तबीयत बिचकी बिचकी जाए। दिलाता जी।

होश हमारे पंछी बनके हो गए 9, 2, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। होश हमारे पंछी बनके हो गए 9, 2, 11 इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। रूप की गर्मी शोला बनकर दिल में आग लगाए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। दिला ता दिला ता जो जो जो जो दिला दिला ता दिला ता जो जो

याद न जाने पागल मनुआ काहे को घबराए। हित हित हित की आए रे तबीयत बिचकी जाए। डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डा डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डा डेड़ा ता डेड़ा डेड़ा डेड़ा डेड़ा डेड़ा।

अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे, रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। जब देखूं अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे, रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। कोई शराबी मद का प्याला जैसे पी के आए, हित हित हित की आए, तबीयत बिचकी बिचकी जाए। दिला ता दिला

अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए रे तबीयत बिचकी बिचकी जाए, भेड़ा टा डेड़ा।

होश हमारे पंछी बन के हो गए 9, 2, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 किस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। होश हमारे पंछी बन के हो गए 9, 2, 11 किस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। रूप की गर्मी शोला बनकर दिल में आग लगाए, हित हित हित की आए तबीयत पिच की जाए। अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए तबीयत पिच की जाए। दिला का दिला का जो जो जो जो दिला का दिला का जो जो

राजन जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए रे तबियत बित की जाए। डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा।

रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। जब देखूं अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे। रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। कोई शराबी मद का प्याला जैसे पी के आए। हित हित हित की आए रे तबीयत बिचकी बिचकी जाए। दिलाता जी।

होश हमारे पंछी बन के हो गए 9, 2, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। होश हमारे पंछी बन के हो गए 9, 2, 11 इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। रूप की गर्मी शोला बनकर दिल में आग लगाए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। दिला का दिला का जो जो जो जो दिला का दिला का जो जो

ढूंढा मगर तुझ सा न पाया कोई। हाँ, अपनों ने मुंह को मोड़ा, दुनिया ने साथ छोड़ा, बेबस समझ के सबने बेकस के दिल को तोड़ा। अब तू ही आसरा दे,

का दस्तूर यहाँ, ये कैसा दस्तूर यहाँ, चिराग कहाँ, रोशनी कहाँ, अजब है।

बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है दामन बचाना। मेरे पीछे पड़ा है जमाना, है बड़ा मुश्किल।

है बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है दामन बचाना मेरे पीछे बड़ा है जमाना, है बड़ा मुश्किल है।

0: के हम ही हो के खफा भूल गए, जब मिली आंख तो सब जोर जफा भूल गए।
1: ओ कसम खुदा की, क्या कर

0: एप्पल
1: देखो सिरना बटके बटके बटके बफिया जाए देखना जी देखना
0: एप्पल।

सुनो, किसी दिल वाले का सवाल सुनो, कहाँ चले जी जरा हाल सुनो, किसी दिल वाले का सवाल सुनो, वहाँ खड़े तुम यहाँ खड़े हम, सोचो जरा, बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो।